0: Community Notices on NPR.
1: Te Pataka Kai 4412 is a safe and friendly space for whānau to come and get kai with no questions asked and no criteria to meet. Best Care Whakapai Hauora Charitable Trust is working with other Manawatū partners to provide kai within our 4412 community. Monday, Wednesday and Friday, 2 to 4pm, bring your own grocery bags. 140 to 148 Maxwell's Line, Awapuni.
0: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at npr.nz or call 06 357 9340.
2: सुनिए मुंबई के मल्हार
3: और दिल्ली के शिल्पी की
2: पामी की
3: पागलपंती
2: नॉट अ शो पर
3: हर सोमवार और शुक्रवार
2: शाम 5 बजे ऑन मानावाटो पीपल्स रेडियो
3: या सुनिए ऑनलाइन
2: npr.nz/show/indian पर
1: बुद्धिज्म ऑन एयर होस्टेड बाय Tenzin Chosang डिस्कसेस बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट बिलीफ्स The show can be heard right here on Manawatū People's Radio every Thursday at 11:30 a.m.
4: The BBC

0: Community notices on MPR.
1: The Rongotea School PTA Casino Night. Friday, 18th of September, Rongotea Rec Centre, Y Street, Rongotea. Doors and bar open 7 p.m. Platters are available to pre-order. For more information, email rongoteapta@gmail.com.
0: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at mpr.nz or call 06 357 9340.
2: Tune in Wednesdays at 10 p.m. for the Joy Jam. I'm Marie Joy Gibson, and I bring to you a podcast about self-development, mental health, what brings us joy, what stops us from getting joy, strategies around bringing more joy into our life. That's Wednesdays at 10, or you can find us online at mpr.nz/shows/joyjam.
3: Round of on MPR, 11 p.m. Tuesday nights, pro wrestling news, views, event previews, recaps, everything that you could possibly want about the professional wrestling world, all combined into one 30-minute show every week at 11 p.m. on Tuesday nights. Just tune into MPR and listen to that sweet, sweet wrestling roundup.
4: Here at NewsHour from the BBC, we gather the most interesting stories from around the world.
5: Hundreds of thousands of civilians caught in the crossfire there.
6: It's going to be very challenging to address this crisis.
4: And with the help of interviews and analysis from our guests, we discover what's really behind them.
7: The entire place is a police state.
4: For the broader perspective, NewsHour from the BBC.
0: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on MPR.
8: नमस्ते, मैं हूं निर्मलानंद और आपका स्वागत करती हूं अपने शो परिचय में. परिचय का लक्ष्य यही है कि हम आपका परिचय उन खास लोगों से कराएं जो फिजी या भारत से आकर न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं और बहुत सफलता या कामयाबी हासिल किए हुए हैं. इसके साथ साथ हम कुछ दिलचस्प विषयों पर भी बातचीत करेंगे और शो को लाजवाब गीत संगीत से भी सजाएंगे.
9: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूं आपका दोस्त मैक्स चोपड़ा और स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से आज के शो में, जिसका नाम है सुरों का सफर. आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार और गायक के की. के जिनका नाम कृष्ण कुमार कुन्नत है. इनका जन्म 23 अगस्त 1968 में हुआ और इनका देहांत 31 मई 2022 में हुआ. ये बहुत ही जाने माने संगीतकार थे. इनको प्लेबैक सिंगिंग में ज्यादा मशहूर माना गया. के ने अपने नाम पे इतने पुरस्कार लिए जैसे कि स्क्रीन अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेशंस 6 बार. के बहुत ही प्रोलिफिक प्लेबैक सिंगर थे इंडिया के, जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में

संगीत गाए। इन्होंने पूरे विश्व भर में अपना नाम कमाया और जाके बहुत जगह पे शो लगाए, और आज हम इनकी बात करेंगे। और साथ साथ में हम आज एक और फिर से आरजे कार्तिक की एक कहानी सुनेंगे, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए पहला संगीत सुनते हैं, के की आवाज़ में तुझे सोचता हूँ।

बहुत ही खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए बात करते हैं केके की आगे। केके जी ने अपना करियर सिंगिंग में शुरू किया एडवर्टाइजिंग जिंगल्स के साथ। तो ये उन्होंने अपना फिल्म डेब्यू सबसे पहले किया 1996 में, जिसका सॉन्ग का नाम था माचिस। उसके बाद केके रिलीज हिज डेब्यू एल्बम पल इन 1999। तो उसमें द सॉन्ग्स पल एंड यारों बहुत ही पॉपुलर हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इसमें से एक गाना भी हम चलाएंगे जिसका नाम है यारों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को जिसका नाम है यारों, और ये गाना मैं आप सभी को अपने दोस्तों को डेडिकेट करता हूँ, और आप भी अपने दोस्तों को डेडिकेट कीजिए ये गाना अपने यारों को, और उन्हें सुनने को बोलिए ये रेडियो शो MPR पे जो हमारा चल रहा है, ताकि वो भी जान सकें कि आप उनको मिस कर रहे हैं और आप उनको कितना प्यार करते हैं।

उम्मीद करता हूँ ये संगीत आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस संगीत ने भाई मुझे तो मेरे दोस्तों की, मेरे यारों की याद दिलवा दी। उम्मीद करता हूँ आपको भी अपने कुछ दोस्त याद आए होंगे। ज़्यादातर ये संगीत जो स्कूल की ग्रेजुएशन या कॉलेज की ग्रेजुएशन होती थी उस पर बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद इनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली के को इस गाने के बाद, और काफ़ी उन लोग उनको जाने लग गए। फिर उनके बाद उनको अपने करियर का एक ब्रेक थ्रू सॉन्ग मिला जिसका नाम था तड़प तड़प के, जो कि मूवी हम दिल दे चुके सनम में था। आज भी ये संगीत काफ़ी जो इंडियन आइडल जैसे शो हैं म्यूज़िकल उस पे गाया जाता है और के को याद किया जाता है। और इस संगीत के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग मेल में नॉमिनेशन मिला।

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।